प्रतिधारण एक सौ समय को हर्ज के साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.pritidharan.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भई रहेको बिहान 6:45 बजे को खबर में ब्रेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य मुख्य खबर एक सातादेखि अवरुद्ध भएको राष्ट्रीय परीक्षा पत्र सम्बन्धी सेवा सुचारू अब नियमित सेवा लिन सकिने नगरपालिकाद्वारा बाल मैत्री

एक्सेस हमें कहाँ का साथ है इंटरनेट ऑनलाइन को www.radiodhadung.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजे को खबर में मोबाइल को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य खबर

0: कोलेस्ट्रोल, थायराइड, कोलेस्ट्रोल महिला तथा पुरूष में देखिने यौन समस्या, यौन असंतुष्टि, शीघ्र स्खलन, धातु तथा श्वेत प्रबल, स्त्री रोग, बांझोपना तथा निसंतान आदि को उपचार,
1: जन्डिस, निमोनिया, हेपाटाइटिस बी तथा सी, पत्थरी, किडनी को रोग, कलेजो को रोग आदि को उपचार,
0: दम, खोकी, मेडिकल सेल, छाती को दाग, माइग्रेन, टाउ को दुख्ने, पिनास, गैस्ट्रिक अल्सर, नाक, कान, घाटी, आंखा को रोग को उपचार,
1: छाला का रोग, सेतो दुबी, चाया, पोतो, बंदीफोर, दाग, एलर्जी, खटिरा, निको नभएका घाउहरु को सफल उपचार।
0: थप जानकारी को लागि सम्पर्क सोल्युसन आयुर्वेदा पायल्स फिस्टुला नसा तथा हार्जोनी उपचार केन्द्र, नीलकण्ठ नगरपालिका तीन, शान्त बजार, थादिङ देशी होटल जनजीविका अगाडि।
1: फोन नम्बर 0105212648, मोबाइल नम्बर 9841414484।
2: समुदाय का लागि समुदायको आवाज, रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: तलांग श्री अकला देवी सुनसारी पसल धादिंग श्री पुछार बजार
1: अनिल सुनार संपर्क मोबाइल नंबर 98 41 71 79 70 और 98 60 22 26 7।

0: हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: 아니마리나의 라이프 인슈어런스 쿨의 라디오. सही बीमारी और अस्पताल धारी रसी में हर एक महीना को पहले शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण
1: यदि तपाईं वा परिवार का कुनै सदस्यमा लागू औषध सम्बन्धी दुर्व्यसनी शारीरिक निराश हुने काममा मन नलाग्ने आलस्य हुने निन्द्रा नलाग्ने बिर्सने शरीर झुन्झम हुने धेरै डर लाग्ने मुटु ढुकढुक हुने धेरै शंका गर्ने अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने आत्मबल कमजोर हुने बच्चाहरूमा